0: नमस्कार, ये आकाशवाणी एडलेड है और आप सुन रहे हैं 5 EBI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ। दोस्तों, आज 7 अक्टूबर 2026 बुधवार का दिन है और शाम के 7:30 बजे हैं और यहाँ एडलेड में बाहर का टेम्परेचर इस वक्त 20 डिग्री है और आने वाले दिनों में आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपने अपने लॉन को अभी तक पानी नहीं दिया है तो आप वेट कीजिए फ्राइडे की। तो दोस्तों, आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि वाणी शुक्ला जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं हिंदू काउंसिल एसए चैप्टर की, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं अपने सौरभ कौशल जो कि एक डेडिकेटेड वॉलेंटियर हैं। तो आज हम इनसे जो है दोस्तों दीपावली के बारे में बात करेंगे जो ये भव्य आयोजन कराते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये इंटरव्यू इनके साथ खास इंटरव्यू शुरू करूं, थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि अभी आने वाले समय में नवरात्रे शुरू होने वाले हैं 11 अक्टूबर से, और उसके बाद जो है महाअष्टमी और महानवमी है जो कि 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी, और विजयदशमी जो कि 20 अक्टूबर 2026 जो कि महापर्व है, मंगलवार का दिन है। तो दोस्तों, आने वाले समय में कितने सारे त्यौहार आने वाले हैं, नवरात्रि, दशहरा, फिर दिवाली, और जो ये आयोजन जो हिंदू काउंसिल यहाँ पर करा रही है इसको और ख़ास बना देगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे उनके साथ, लेकिन इससे पहले मैं शुरू करूँ, चलिए आपको सुनाते हूँ एक भजन। जो भजन है वो मैं आपको अभी सुनाता हूँ, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैं जो है वाणी शुक्ला जी हमारे साथ मैंने कहा था जुड़ी है, भजन मैं आपको एक मिनट बाद सुनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी के कारण भजन में अभी कुछ है। तो वाणी शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले वाणी जी, ये बताइए कि ये कितने सालों से यहाँ पर दिवाली का जो है ये महापर्व है, फंक्शन जो है आप लोग कर रहे हैं?
1: सो अमित जी, ये हमारा 12th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है। पिछले 12 सालों से हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऐसे चैप्टर दीपावली पर्व को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं एडिलेड में। इनिशियली शुरुआत के दिनों में हिंदू काउंसिल ही सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने दीपावली पर्व को कम्युनिटी को जोड़ने के लिए शुरू किया था, और 2014 में, 2014 में, और उसके बाद से अब आपको पता ही है बहुत सारे आयोजन होने लगे हैं और काफ़ी कुछ कम्युनिटी भी पहले से काफ़ी बढ़ गई है। तो अब हम इसको थोड़े बड़े स्केल पर ले गए हैं, जैसे आपको पता है कि अब हम उसको एडिलेड शो ग्राउंड्स में करते हैं।
0: पिछले कई सालों से आप जो है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो अटेंड कर रहे हैं इस वक्त, मेरे ख्याल से क्या आपके एक्सपेक्टेड रहती है, या पिछले जो आपके हुए हैं उनमें कितने लोगों ने इसको अटेंड किया?
1: तो हमारा हाईएस्ट एक्चुअली टच किया था करीब 16,000 लोगों का, बट वो एक साथ नहीं होते हैं, वो मतलब आते जाते रहते हैं और पूरा टोटल नंबर मिला करके
0: विद इन वन डे।
1: हाँ, पूरा, क्योंकि ओवल में रावण दहन भी होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ रावण दहन देखने के लिए ही आते हैं, तो वो जो टोटल एक काउंट होता है वो हमारा 16,000 तक एक बार टच किया था। सो इट इज अ बिग कम्युनिटी इवेंट।
0: और आपने अब जब रावण की बात छेड़ी है तो आपने बताया था कि ये हर जगह पूरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है, कुछ ही स्टेट्स में होता है और साउथ ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ देम।
1: हाँ जी, तो ये हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जो अलग अलग स्टेट्स के चैप्टर्स हैं, इसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स ही इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं, एक सिडनी में होता है, एक क्वींसलैंड में होता है और साउथ ऑस्ट्रेलिया में होता है।
0: चलिए वाणी जी से बातचीत जारी रखेंगे, अब सुनते हैं ये भजन।

0: Asian fusion and authentic Indian. With a relaxing seating arrangement for dine-in and takeaway options at our two locations, Mother India Kitchen, Port Road, Alberton 08711-26878 and Cinnamon Curry, Findon Road, Woodville South 08708032001. You can contact for your private or official functions. We are proudly announced that Mother India Kitchen and Cinnamon Curry are the sponsors of this program.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 5EBI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ और आज मेरे साथ खास मेहमान है वाणी शुक्ला जी और सौरभ कौशल. तो चलिए सौरभ से बात करते हैं. सौरभ, थोड़ा अभी वाणी जी ने जैसे बताया कि रावण जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया में केवल 3 जगह ही होता है, तो थोड़ा सा आप रावण के बारे में और जो फंक्शन जो इतना बड़ा ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं थोड़ा उसके बारे में, कल्चरल और थोड़ा वो फूड स्टॉल्स वगैरह सब कुछ बताइए थोड़ा डिटेल में हमें.
2: इसके अंदर रावण को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं. इतना आसान नहीं है जैसे हम इंडिया के अंदर हमने बहुत बारी किया हुआ है. सीधा हम रावण को लाते हैं, खड़ा कर देते हैं, ठीक है, उसको जला लिया. पुलिस सर्टिफिकेट आपको सिर्फ चाहिए होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं और बहुत इजी होता है. बट यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल, फिज़िकल, प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं. यहाँ बहुत सारी परमिशंस आपको लेनी पड़ती हैं. उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं होता है. बहुत से वॉलंटियर्स मेरी तरह आते हैं आगे हेल्प करने को, और हमें पहले पूरा शीट्स नीचे लगानी पड़ती है, फिर फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ती है जो वहाँ खड़ी रहती है पूरे टाइम जितना ये होता है, ये चलता है, और एम्बुलेंस, पुलिस, हर चीज़ वहाँ पे पहले से तैनात रहती हैं किसी भी एमरजेंसी के लिए. और इसके अलावा हम लोग होते हैं जो कि शीट्स वगैरह वहाँ लगाते हैं और रावण खड़ा करने में टेक्निकल टीम की हेल्प करते हैं, और हमारे को हर तरीके से अपने हाथ पूरे पक्के करके रखने पड़ते हैं. तो बस जी, बहुत आसान
1: नहीं है इंडिया. वैसे सौरभ हर साल अटेंड किया और मैं सच कहूँ तो मुझे जितना मज़ा इंडिया में आता था ना रावण देखने में, शायद उससे ज़्यादा मज़ा यहाँ आया. मतलब क्योंकि मतलब जो आप लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो सच में बहुत ही मतलब बढ़िया करते हैं. इतना बड़ा रावण और आप लोग ऐसा फील ही नहीं होने देते कि हम कहीं इंडिया से बाहर हैं. अच्छा, तो आप थोड़ा कल्चरल उसके बारे में बताइए जो
2: पहले मैं वो सिर्फ आपकी छोटी सी रावण वाली बात ख़त्म करना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ रावण लगाने वाली बात नहीं है. अभी परसों की बात है, हम लोग रावण को एक ट्रक से अनलोड करके एक जगह पे रखवा के हैं जिसका हम रेंट भी पे करते हैं पूरे साल का, और भी बहुत हमारा सामान हर साल का वहाँ पड़ा होता है. तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं इसके बैकग्राउंड में. प्लस जैसा कि आपने कल्चरल का पूछा, मैं बताता हूँ. तो हिंदू काउंसिल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देता है आजकल बच्चों को, और जो लोग अपना यहाँ पर अपना अगर कोई पैशन जो इनका है जो आगे फॉलोअप करना चाहते हैं जैसे सिंगिंग का या डांस का या ड्रामा का, तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देता है हिंदू काउंसिल. इसमें नई नई चीज़ें आप देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई पेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है. सारे मतलब आते हैं वहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं और सारे नए टैलेंट्स को मौका दिया जाता है. स्टेज आपको मिल जाता है, यू हैव गॉट योर स्लॉट, आप अपना परफॉर्मेंस करें, सब कुछ करें. तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े हर तरीके की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, बॉलीवुड डांस से लेकर और क्लासिकल हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, भांगड़ा एंड लाइक एवरीथिंग. और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छी बात है कि सारी फैमिलीज वगैरह सबके लिए आना बहुत महत्वपूर्ण है इस, क्योंकि आपको हर तरीके के वहाँ फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे, इंक्लूडेड आपको पिज़्ज़ा से लेके गोलगप्पे से लेके टिक्की से लेके पापड़ी चाट, हर एक चीज़ आपको, चाट पकौड़ी देंगे, हर एक चीज़ आपको.
1: यस, इंडियन से लेके नॉर्थ इंडिया तक सारी डेलिकेसीज वहाँ पर होंगी.
2: तो मेरे जैसे लोगों के लिए भी बहुत कुछ है.
1: नहीं, हम सब खाने के शौकीन है, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा इंडियन होगा जो खाने का शौकीन नहीं होगा. और रावण भी बता रहे थे आप, कितने बड़ा रावण है?
2: 35 फीट का रावण.
1: 35 फीट बड़ा रावण, तो ये अपने में ही दोस्तों एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इतना बड़ा रावण को ऑर्गेनाइज करना और सब कुछ करना. तो दोस्तों चलिए अब ये बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब सुनते हैं एक गाना.

0: Seeking a genuine assortment of spices and authentic desi products? If so, a visit to Royal India Groceries is indispensable. Transporting you to the heart of India, it offers an exploration into desi culture. Situated on Marion Road in South Plympton, Royal India Groceries welcomes visitors 7 days a week. For any queries or further information, please reach out on 0883710051.
1: चलिए दोस्तों, अब बातचीत को जारी रखते हैं और वाणी शुक्ला जी के पास चलते हैं। वाणी जी, इतना भव्य आयोजन हो रहा है, भारतीय परंपरा के अनुसार आप ये सब ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इसमें जो दीपावली का ये त्यौहार है, ये बिल्कुल वेजिटेरियन खाना होता है और इसमें कोई अल्कोहल इन्वॉल्व नहीं होती है, और इतना बड़ा आयोजन है, तो पहले तो आप थोड़ा हमें अपने जो आप इतना कर रहे हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन, कैसे आप लोग इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को इसके बारे में बताइए।
2: अमित जी, ऐसा होता है कि एक मेला ख़त्म होता है और दूसरे मेले की तैयारी शुरू हो जाती है क्योंकि एडिलेड शो ग्राउंड की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही रेयर होती है। इस बार बहुत लोगों ने सवाल हमसे ये पूछे कि आपने दीपावली के एक दिन पहले ही क्यों रखा, जो उस दिन छोटी दीपावली है उस दिन पूजा करनी है, क्योंकि 8 नवंबर को मेन दीपावली है। नॉर्मली हम लोग उसको कोशिश करते हैं 1 या 2 वीक के पहले रखने की, लेकिन इस बार एडिलेड शो ग्राउंड अवेलेबल नहीं था, तो जो अवेलेबल डेट थी सबसे क्लोजेस्ट हमको वही लेनी पड़ती है। तो एडिलेड शो ग्राउंड की अवेलेबिलिटी इतनी मुश्किल से मिलती है कि हमें उसको 1 साल 2 साल पहले ही ब्लॉक करना पड़ता है। अभी उन्होंने नया नॉर्म निकाल दिया है कि वो प्री बुक नहीं करते हैं, सो एज सून एज वी फिनिश द इवेंट वी सेंड देम अनदर ईमेल कि हमारे अगले साल की बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि वो हर साल ही बुक करेंगे उसको। तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है अमित जी। उसके बाद हम लोग थोड़ा बीच में क्रिसमस ब्रेक आता है और जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होती हैं जनवरी फरवरी से हमारी कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाती हैं, क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्री प्लान करके रखनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्या नया लाना है, कैसे क्या चेंजेस करने हैं। फीडबैक मीटिंग होती है कि इस साल पर कौन सी कमियाँ रह गई, कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, और उसके बाद हम लोग नए सिरे से फिर नए साल की तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम इवेंट के करीब पहुंचते हैं, सो 3-4 महीने पहले से पूरी फुल ऑन तैयारी शुरू हो जाती है। इतना बड़ा इवेंट है, इसमें काफ़ी सारा मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट भी होता है, साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से हमें कुछ हेल्प मिलती है, लेकिन बाकी खर्चों को पूरा करने के लिए हमें स्पॉन्सरशिप कलेक्ट करनी पड़ती है, स्टॉल होल्डर्स को रीच आउट करना पड़ता है, सभी जो भी हमारे वेंडर्स हैं उनको सबको कम्युनिकेट करके उनकी डेट्स बुक करनी पड़ती हैं। तो काफ़ी कुछ चलता रहता है, और जैसे जैसे मेला करीब आता है 1 या 2 महीने के बाद हम फिर वो वीकली मीटिंग शुरू कर देते हैं, और हर वीक हम चीज़ों को रिफाइन करते करते करते करते करते फिर वो हम फाइनल डे तक पहुंचते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट नीड्स लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड डेडिकेशन।
1: तो ये सब वाणी जी वॉलंटियर्स ही हैं, ये कोई पेड इसमें तो नहीं होता?
2: नहीं अमित जी, इसमें कोई भी पेड नहीं होता, सारे वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होते हैं, और वॉलंटियर्स अपना पर्सनल टाइम छोड़ के अपने लाइफ में अपने प्रोफेशंस में इनफैक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके ये कम्युनिटी का काम करते हैं। इसमें किसी को कोई पर्सनल बेनिफिट्स की वो नहीं होती है, उम्मीद नहीं होती है, और सब लोग सिर्फ समाज सेवा के लिए ये कार्य करते हैं।
1: दोस्तों, ये बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट है जो इतना समय निकाल कर, नहीं तो हम सब अपने परिवारों में बिजी हैं, अपने दोस्तों में पार्टियों में बिजी हैं, लेकिन कोई ऐसे हैं जो हम लोगों के लिए इतना बड़ा मेला आयोजित कर रहे हैं। तो इसमें इस बार दिवाली में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल है वाणी जी, उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, इस बार हमने कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइज कराया है। सिडनी से एक टीम आती है रामलीला प्रेजेंट करने के लिए, तो वो सभी बिल्कुल प्रोफेशनल वे में, और वो भी वॉलेंटियर्स हैं आपको बता दें, लेकिन वो आते हैं तो उनको यहाँ तक लाने का वो सारा कुछ हम उनके लिए अरेंज कराते हैं। तो वो सिडनी से पूरी 30 लोगों की टीम आती है यहाँ पर, और जो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से रामलीला करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि रामलीला क्या होती है। सो रामलीला इज़ अ स्किट विच शोज़ हाउ राम वेंट फॉर वनवास एंड रामजी वेंट फॉर वनवास एंड देन ही गॉट बैक आफ्टर विनिंग ओवर रावण। तो वो पूरा एक स्किट हम 90 मिनट्स का प्रेजेंट करते हैं और बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है। सारे ही कलाकार बहुत प्रोफेशनल हैं और प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर होता है उसका।
1: ये बहुत अच्छा है, ये नॉलेज जो है ट्रांसफ़र करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो गैप बिटवीन जनरेशंस आ जाता है जिनको अपने बारे में पता ही नहीं
2: पता
1: है
2: ही नहीं
1: हमारा क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है।
2: क्योंकि भारत में तो ये हर गली हर नुक्कड़ पे हो रहा होता है बट यहाँ पे तो बच्चों को देखने को नहीं मिलता है।
1: और रावण के अलावा जो है कुछ और भी, जैसे दिवाली की खास चीज़,
2: अब दिवाली है और पटाखे ना छूटें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो दिवाली के दीपावली मनाने के लिए हम उसमें फायरवर्क्स भी रखते हैं। सो रावण के बाद फायरवर्क्स भी होता है, सो बच्चों का पूरा एंटरटेनमेंट होता है वहाँ पे। हम लोग जंपिंग कैसल रखते हैं, हिना होती है और टोटल एंटरटेनमेंट फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन।
1: चलिए दोस्तों ये बातचीत जारी रखेंगे, अब सुनते हैं ये गाना।

0: for setting up of tax-effective business structures, tax advice, business activity statements, and income tax returns, please contact LSM & Co. Chartered Accountants. Individual tax return fees start from only $77. Conditions apply. You can find them at 212 Prospect Road, Prospect, or call them on 8342 3923. LSM & Co., a sponsor of this program.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 5 EBI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज वाणी शुक्ला जी और सौरभ कौशल जी। तो सौरभ, बात को आगे बढ़ाते हैं, आप जो है थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताइए थोड़ा टिकट्स के बारे में, अवेलेबिलिटी, और थोड़ा जो प्रोग्राम के बारे में, टाइमिंग्स वगैरह के बारे में बताएंगे आप।
2: जैसे कि हमने बात करी, 7 नवंबर को प्रोग्राम है, और ये 1 PM टू 9 PM के बीच में रहता है, और अभी टिकट्स ऑनलाइन है 15 अक्टूबर से, जो कि आपको $15 की मिल जाएंगी टिल 15 अक्टूबर। उसके बाद प्राइजेस बढ़ के $20 हो जाएंगे, और अगर आप मिस कर जाते हैं, ऑनलाइन नहीं ख़रीद पाते, तो आपको वहां पर भी टिकट मिल जाती है ऑन गेट्स, बट दैट कॉस्ट यू अराउंड $25। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों के लिए जो 12 साल से छोटे हैं, और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 60 साल से ज़्यादा हैं, उनके लिए फ्री एंट्री है, नो टिकट्स रिक्वायर्ड। एंड हाँ, जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे फेवरेट जो फायरवर्क्स वहाँ पर होते हैं, उनको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, और बिल्कुल उसको टाइम से पहुँच के देखिएगा, बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही अच्छे, बहुत ही डिफरेंट। और वो फायरवर्क्स सारे रावण के ऊपर हो रहे होते हैं, सो ऑब्वियसली उसको आप जो है न्यू ईयर के फायरवर्क्स और किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, दैट इज टोटल डिफरेंट।
1: हाँ, तो दोस्तों 7 नवंबर को शनिवार का दिन है, तो अगले दिन संडे है, तो आप पूरा दिन आराम कर सकते हैं, उस दिन शनिवार को पूरा इंजॉय कीजिए और संडे को जो है आराम कीजिए। वाणी जी, आप थोड़ा सा बताएंगी अब वॉलंटियर्स के बारे में।
3: हाँ, जैसे अमित जी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, हमें बहुत सारे वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है। उस दिन ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स वहाँ पर होते हैं, बट जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और अगर उनके दिलों में थोड़ी सी आशा है, या वो कम्युनिटी को हेल्प करना चाहते हैं और इस फेस्टिवल में, इस सेलिब्रेशन में हमको सहयोग करना चाहते हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। कोई बड़े कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ उस दिन आकर के भी करना चाहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। आप इनका नाम है मिस्टर भाविन मोदी, एंड ही इज़ लुकिंग फॉर द वॉलंटियर टीम। यू कैन कॉन्टैक्ट हिम ऑन 0405541286। सो अमित दुआ जी,
1: एक बार और
3: इनका नाम है मिस्टर भाविन मोदी, एंड आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं 0405541286।
1: तो दोस्तों, अभी हमारे साथ जो है वाणी जी और सौरभ जुड़े हुए थे, हम आपको बहुत

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल साहब।
1: थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद जी आपका।
0: तो आपसे आज इनके साथ मेरी थोड़ी सी चर्चा रहेगी और थोड़ा सा आप जो है पहले अपना इंट्रोडक्शन हमारे सुनने वालों को बताइए।
1: मैं सबसे पहले आप सुनने वाले जितने भी श्रोते हैं उन्होंने मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत और नाले नाल जय हो वन नेशन आस्ट्रेलिया दी ग्रेट। मैं इंडियन आर्मी 1970 दे विच ज्वाइन कीती सी और 40 ईयर सर्विस के बाद आई रिटायर एज ए फुल कर्नल फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड आफ्टर दैट आई सेटल एट हुशियारपुर विद माई फैमिली इन पंजाब। लेकिन अज के दिन मैं बहुत गल्लां याद आ रही, पंजाब का जो नौ आता याद लगी नज़र पंजाब नू, लगी नज़र पंजाब नू, इहदी नज़र उतारो लैके मिर्चां कौड़ियां इहदे सिर तो मारो। हुण जिदा आप जी के प्रोग्राम ने मैनू पुछया हैगा भी अपने बारे दसो, मैं जो है अपनी स्कूलिंग जो कीती है बड़े मशहूर शहर है पंजाब का, शहर कुराली, जिथे जो महाराणी पटियाला पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की मिसिज जो है ये और कैप्टन दोनों आए साढ़े शहर कुराली। उन्होंने दिनों में जो आए तो उत्थे कृष्णा मंडी साढ़े शहर के उन्होंने दिनों में बड़ा अच्छा गाना चलिया उन्होंने, वो मैं हमने तुम दो लाइन याद करके दसदा, बहुत अच्छा कराना कुराली के पिछों। गोली गोली फुट वर्गी लत चुट चुट झांजरा वाली, उन्नी गोली गोली फुट वर्गी लत टुट चुट झांजरा वाली, ये उत्थे गाना महाराजा पटियाला और उन्होंने मिसिज नू साढ़े ना बंद ने गा के सुनाया सीगा। और हुण मैं अपने अकैडमिक लाइफ का दसिया तुहानू, हायर सैकेंडरी पास खालसा हायर सैकेंडरी स्कूल कुराली तो पास की, फिर मैं 1970 दे विच आर्मी ज्वाइन करके और उत्थे ही मैं आर्मी दे विच ग्रैजुएशन की और फिर कमीशन लिया। कमीशन के बाद मैं तुहानू दस्सिया 40 ईयर सर्विस करके मैं 2008 रिटायरमेंट होकर हुशियारपुर सैटल हो गए।
0: तो आप तो भारत में बहुत, जब आपने आर्मी में सर्व किया तो आप काफ़ी जगह भारत में गए होंगे।
1: हाँ जी,
0: में
1: हाँ जी दुआ जी, मैं पूरा ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री मैं बड़े माण के नाल तुहानू कहना, बाहर इंडिया मैनू देखने के चांस मिले, असाम, मेघालय, सिक्किम, मद्रास, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दैन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द माई आर्मी, मैं सारी जगह घूमने का नाल मेरे बच्चे भी घूमते रहे, जिथे जिथे गए उन्होंने स्कूल मिलता रहा, उन्होंने एजुकेशन मिलती रही और सारे कल्चरल जो है साडा इंडिया का माण है वो साढ़े बच्चों नू कुदरती मिल गया नाल रहने करके।
0: तो भारत भ्रमण से इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि जॉब के साथ साथ आपका पूरा भारत भ्रमण भी हो गया।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत कंट्री पर सानू माण है अपने कंट्री के ऊपर जिन्हें सानू इतना दिमाग बुद्धि दिती है। मेरे बच्चे जो है मैं वेरी प्राउड, मेरी बड़ी बेटी है डॉक्टर दलबीर कौर, वो इतने 2007 के अपने हसबेंड के नाल आ गए छोटी बेबी लगे और अज पूरा फैमिली नेशन आस्ट्रेलिया की नेशन, ओल्ड एज हैंडीकैप्ड परसन, डिसेबल्ड परसन, नर्सिंग, सारा काम वो देह की सेवा भी कर रहे हैं, अपना नाल नाल अपनी पेट पूजा भी करते हैं, इहदे उच्चे होर कोई सेवा नहीं हो सकती देह की, सानू माण है बच्चों के ऊपर।
0: चलिए आपसे जो है बातचीत जारी रखते हैं, अब सुनते हैं ये गाना।

0: चलिए हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कर्नल साहब के साथ। तो कर्नल साहब, आपका क्या मैसेज है आज की इस जनरेशन के लिए?
1: मैं दुआ साहब, जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उनके लिए ये मेरा मैसेज है। नौजवान पीढ़ी जो है, यंग जनरेशन, सबसे पहले जो है बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अपनी मेहनत है, हार्ड वर्क, वो देयर शुड बी योर वेपन। हार्ड वर्क, मेहनत तुहाडा हथियार होना चाहिदा है, होर कोई वेपन रखना। सैकंड नंबर ते आंदा हौसला, योर स्पिरिट, हौसले नूं अपनी ढाल बनाओ। और तीसरा है फर्ज जो है, वो देयर शुड बी योर आइडेंटिफिकेशन, पहचान, पता लगे भी मुंडा जो फर्ज वाला है, बच्ची फर्ज वाली है। ये तीन चीज़ां तां बहुत जरूरी रखनी जा तुसी हमेशा। और ये नाल नाल जो है अलोंग विद द अबव, रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, क्योंकि आप यू आर इन द ग्लोबल वर्ल्ड, जिथे सारे रब, सारे भगवान, सारे इकट्ठे ही है। मैं मन गया धरती नूं आके इत्थे प्रणाम करदा, धरती नूं बार बार मेरे मिसेज भी प्रणाम करते हैं। रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, रिस्पेक्ट एवरी कंट्रीमैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, रिस्पेक्ट लॉ एंड द नेशन, जो अपना लॉ है इत्थे दा, जो नेशन दा लॉ, दैट शुड बी रिस्पेक्टेड एट ऑल कॉस्ट, वेयर यू लिव, वेयर यू सेटल, टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट। नेक्स्ट आंदा ऑलवेज रेडी टू सैक्रीफाइस, फिर ड्यूटी तुहाडी क्या बनती है? ये नहीं भी अपना मेहनत कर ली, सैटल हो गए, खा ले, बच्चे हो गए। यू हैव टू रेडी टू सैक्रीफाइस फॉर द कंट्री इन विच यू लिव। सेंड योर चिल्ड्रन, हो नेक्स्ट ड्यूटी तुहाडी क्या आती है? ये नहीं सिविल लाइफ कर दो, मैं मिलिट्री मैन है, मेरी ड्यूटी बनती तुहानू दसना। बाहरले कंट्री इदां देखिया, रशिया, दैन दूसरे कंट्री बड़े बड़े है, छोटी उम्र के बच्चे आफ्टर स्कूलिंग दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू द आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, क्योंकि यू गैट दैट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हो जाएगा। ऑलवेज रेडी टू सैक्रीफाई फॉर द कंट्री इन विच यू लिव। सेंड योर चिल्ड्रन टू ज्वाइन आर्मड फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, बॉर्डर पुलिस, एविएशन, टू मेक द कंट्री ग्रेट वेयर यू लिव। ये मेरा अज्ज दा तुहानू मैसेज हैगा सारिया नू, ये अपील भी है, मैसेज भी है। फिर देखो तुहाडी लाइफ जय जयकार हो जाएगा, तुहानू साडा देश तां बड़ा प्राउड करेगा। हुण अखबार दे विच मैं देखिया यूएसए दे विच, इंग्लैंड दे विच फस्ट पंजाबी पायलट बनिया, रॉयल एयरफोर्स ऑफिसर। वो फोटो देख के कितना माण हुंदा साडे लोकां नू, कि साडे लोक इन्ने मेहनती है, क्योंकि वजह क्या है, उन्होंने उस कंट्री को अपना लिया, दे सेटल देयर, दे लव दैट कंट्री वेयर दे लिव।
0: बहुत ही जोश भरा मैसेज दिया है आपने आज की जो जनरेशन है उनके लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जिस कंट्री में आप रहते हो उसको रिस्पेक्ट करो, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मानो। क्योंकि कई लोग होते हैं जो बस कहीं बाहर से आते हैं और उसके साथ कंपेयर करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। हम जहाँ हैं हमें वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मानना है, वो इम्पोर्टेंट है।
1: जी जी जी जी। और मेरा एक दो शब्द है, मैंने सॉन्ग भी याद आ गया, दो पंजाबी दे जो लाइन
0: भी है,
1: पंजाबी फिल्म दी,
0: बिल्कुल
1: नानक नाम जहाज गाने आ गए, दो बोल मेरे याद आ गए, वो मैं आपके सामने अर्ज करदा। लगी नज़र पंजाब नूं इहदी नज़र उतारो, लैके मिर्चां कौड़ियां इहदे सिर तों मारो। जो अज पंजाब की हालत है, वो तो कई साल, 20-25 साल पहले फिल्म बनी सी नानक नाम जहाज है, वो पहले ही उन्होंने फ्यूचर इदा पता लग गया भी इदा की हालत होनी है, भी पंजाब के ऊपर मिर्चा मारने का टाइम आ गया है। लेट अस प्रे, बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई फिक्र वाली करने की गल नहीं। सारे ऑल पब्लिक जिनी भी उत्थे है, सरकार, सारे रिलीजन, सारे प्रार्थना करते हर रोज़ भी अच्छा बन जाए मुल्क द्वारा। जिदा कहिंदे ना, देशां विचों देश पंजाब नहीं सही, जिवें फुलां विचों फुल गुलाब नहीं सही। मेरा देश मेरे

0: दोस्तों हम बातचीत जारी रखते हैं कर्नल साहब के साथ। तो कर्नल साहब, आपको ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को, सुनने वालों को बताइए।
1: मैं अपने दर्शकों को ये दसना चाहता है, जो ऑस्ट्रेलिया और एडलेट है या पूरा वन नेशन जो है, जो असी पंजाब दे विच सुनते से धरती के ऊपर स्वर्ग भी है, वो कितने जाने की जरूरत नहीं। ये धरती का स्वर्ग है ऑस्ट्रेलिया, ये एडलेट स्वर्ग है। ये किस तरह स्वर्ग है, हजारों आदमी मैं देखे, हजारों ही घर देखे, कितने भी डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, इन्ने घर है, चिड़िया जानवर तोते कैट वगैरह या होर अपना इन्होंने डॉग छोटे बच्चे पप सारे रखे है, पर नो नॉइस, नॉइज पोल्यूशन इन्हों की नहीं है। ये सारा माण क्रैडिट है साढ़े, तो लोग उसे कन्न खाई जाते हॉर्न बजाते हैं बेट अवे काश कि साढ़े भारत का दबीजा का सुरग उत्थे बन जाए। यही साड़ी प्रार्थना भी लोग जो है इन्ने एडवांस है, इनू ता ही वन नेशन कहें ग्लोबल वर्ल्ड। 2000 साल पहले सोच के इन्होंने कोई भी चीज़ कम करना, जे थिंक अबाउट 2000 अहैड, सड़क बनानी, घर बनाना, हाउस बनाना, स्कूल बनाना, जिम, बार, स्विमिंग पूल, जे थिंक अबाउट 2000 ईयर। साडा वाला बंदा 100 साल पिछे सोचता है किदा पिछे जाना, काश उन्होंने भी इन्नी समझ आए, फिर साडा कंट्री पहले मंगण सतयुग बन जाए महान, जो पहले रामचंद्र जी के टाइम सिगा, सहन शांति सुख शांति, कोई लुटेरा, कोई डाकू, कोई मुंदी होने वाला, कोई कांटा होने वाला नहीं होया। सो नैक्सट है वो इन्हों जो है ट्रैफिक कंट्रोल दी सुपर सुपर है, कदे लाइट नहीं जानी, कोई पुलिसमैन नहीं सड़क के उपर, हजारा गड्डियां आ रही डे नाइट कंटिन्यू, दैन लाइट, वाटर, रोड, पार्कस दी सुपर है, इन्हों की सिफत तो बहर है, इन्नी अच्छी है, टॉप सुपर है।
0: चलो बहुत बहुत अच्छा आपने जो बताया, ये अगर ऐसा हो जाए तो सचमुच भारत भी स्वर्ग बन जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया और मुझे बहुत खुशी हुई आप हमारे आज यहाँ पर आए, आपने इतनी अच्छी बातें आज की जनरेशन को बताई, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, अपने बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। और दोस्तों, इस अगले गाने के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब मुझे अमित दुआ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार,
1: धन्यवाद भाजी, थैंक यू।